ठकवारी बहुत कर गाले हम गुर राख दिए कर पाले काम क्रोध से उठाटन बनिया गुर उपदेश मोहि कानी सुनिया जद इको तै महा पर चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कहा ए रसे बेखागन इन संबंधी रसालत जाए हम गुर राख हर लिबलाए अमेब से मसलत छोड़े गुर कहा ए मूर्ख होडी एह निकर कर कही न पाए हम गुर राख लिए लिबलाए इन लोगन से हम पहे बिराए एक ग्रह में दोए ना कटाए आए प्रभ है अंचल लाग करो तबस प्रभ सरवाग प्रभ हस बोले किए न्याय सगल दूत मेर सेवा लाए तू ठाकर एहो ग्रह सब तेरा तू ठाकर एहो ग्रह सब तेरा कौ नानक गुर किया नवेरा प्रभाती महला पंजवा मन में क्रोध महंकारा पूजा करे बहुत विस्तारा कर स्नान तन चक्र बनाए अंतर के मल कभी ना जाए इत संजम प्रभ के नहीं न पाया भगवती मुद्रा मन मोह

ताला बरमी मारी सपन हुआ प्रभ सब किश जाने जिन तू के आम कुवर ताप गेरी ते वस्त्रा आपदा का मारिया ग्रह ते नसदा देश छोड़ परदेसे ताया पंचन ढाल नाले ले आयाम कान फराहे हराए टूका कर कर मांगे त्रिपावन ते चूका बिंता छोड़ बद नदर पर नारी बेसन पाइये महद खारी बोले ना ही हुई बैठा मोनी अंतर कल्प भाइये जोनी अनते रहता दुख दे ही सहता हुक्म न बुझे व्याप्य ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल भेद समृते मनमुख कर्म करे अजाए ज्यों बालू कर ठौर न ठाए जिसनु पहे गोविंद दे आला गुर का भजन तिन बाध्यो पाला कोट मधे कोई संत दिखाया नानक तिन के संग तराया जे होवे पाग ता दर्शन पाइये आप तरे सब कटंब तराइये रहाओ दूजा प्रभाते महला पांजवां सिमरत नाम किल विख सब काटे धर्म राय के कागर फाटे सा संगत मिला हरस पाया पार ब्रह्म हरिद महे समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण शरण आया रहाओ चुका गौण मिटिया दियार गुरद खिलाया मुक्त गुद्वार हर प्रेम भक्त मन तन सद राता प्रभु जनाया तब ही जाता कट कट अंतर रविया सोए तिस बिन बीजो नाही कोए बैर ब्रोध सिद्धे पै परमा प्रभु नात्मे किन्ने धर्मा महातरंग ते काढे लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जब तब संजम नाम संभालिया अपने ठाकर नदर निहालिया मंगल सुखा कल्याण चाई जय सेवक गोपाल गोसाई प्रभ सो प्रसन्न पे गोपाल जन्म जन्म के मिटे विताल होम जंग उर्ध तप पूजा कूर्ति स्नान करी जाम

से दुहमे तत नाए राम। अल्ले राम जीवो तेर नाए, तू कर मेहराम तसाई राम। दखन देस हरी का वासा, पछम अले मकाना। दिल में खोज दिले दिल खोजो, यही ठार मकामा। ब्राह्मण ग्यास करे चौबीसा, काजी मेहरम जाना। ग्यारे मास पास के रखे, एके माहे निदाना।

एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। लोगां परम न भूलो पाई, खालक खलक खलक मैं खालक, पूरे हो सब ठाई राम। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे, ना कुछ पूछ माटी के पांडे, ना कुछ पूछ कपारे। सामे सच्चा एको सोए, तिसका किया सब कुछ होए, हुक्म छाने सोए को जाने, बंदा कहिए सोए। अलो अलकन जाई लिखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका, कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा प्रभाते। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे, जो सब में एक खुदाए कहत, तो के मुर्गे मारे। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई, तेरे मन का परमन जाई, रहाओ पकड़ जो आन्यो दे बिना से। माटी को विस्मल किया, ज्योत स्वरूप अनहद लागे, कहो लाल क्या किया। क्या उजो पाक के अमो तोया, क्या मसीत से लाया, जो दिल में कपटे निवार जारो, क्या अज काबे जाया। तून पाक पाक नहीं सुझया, तिसका मरमन जान्या, कहे कबीर पिस्त दे चुका, दो जुग से मन मान्या। प्रभाते सुन सदया संध्या, तेरी देव दिवाकर, अध पत आद समाये, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाय। लियो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुरु पूजो पाए, ठंडा ब्रह्मा निगम विचारे, अलकन लखे आ जाए। रहाओ तत तेल नाम किया भाती, दीपक देव जे आरा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूजे बूजन हारा। पांचे शब्द अनहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। प्रभाते बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की बिरता मन ही जाने, के बुझल आगे कहिए, अंतर जा मेरा मरवाए, मैं डर कैसे जाइए। बेदली

मूर्ख नलाज रे। राम भगत हिए आना छाड़ दे तै मन को मान, नानक जाने विकान जग में विराज रे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपा निर्वैर, काल मूर्त जुनी सह पंगर प्रसाद। श्लोक संस्कृति महला पहला, पढ़ पुस्तक संध्या भादं। सिल पूजस मुगल समादं, मुख झूठ विभिखन सारंग। त्रैपाल त्यार विचारंग, गल माला तिलक ललाटंग। दोय तोती वस्त्र कपाटंग, जो जानस ब्रह्म करमंग। सब फूकट निश्चय करमंग, को नानक निश्चो त्यावै। बिन सतगुर बाट ना पावै, निफलंगे सत तसे फूक निफलंगे तसे जन से। जावद ब्राह्मणा बेंदते सागरंग संसार से, गुर प्रसादी तरे के। कारण कारण समरथ है को नानक विचार, कारण करते बस है जिन कल रखी तारा। जोग सबदंग ज्ञान सबदंग, वेद सबदा ब्राह्मण है। खत्री सबदंग सूर सबदंग, सूदर सबदंग प्रकृत है। सर्व सबदंगता एक सबदंग, जे को जान सपेयो। नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। ए कृष्ण ता सर्व देवा, देव देवा ता आत्म है। आत्म श्री वासव देव सह, जे को जान सपेवा। नानो नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। श्लोक संस्कृति महला पांचवा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपह निर्वैर, काल मूर्त जुनि सह पहंगर प्रसाद। कतांच माता कतांच पिता, कतांच विनता बिनोत सुत है। कतांच प्रहात मीत हित बंधव, कतांच मोह कटंब तै। कतांच चपल मोहनी रूपंग, पे खंते त्याग क्रोत। रहांत संग भगवान सिमर नानक लबदंग। अचोत तने त्रिगांत मात पिता सनहिंग, त्रिग सनहिंग प्रहात बाद बैम। बे त्रिग सिंह बिनता विलास, सुते त्रिग सिंह गृहारथ कै। साध संग सनहिंग सतहिंग, सुख अंग बसंत नानके। मिथ्यंत दिअंग खेणंत बरणंग, वरतंत जरुआ इत्यंत माया। अत्यंत आसा अस्त अथ तय पवनंग, गणंत अस गणंत सुभाषा प्यान तरमंगा। पातांत मोकूपा दल भय दयांत आता सरंग नानका। गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा, काच कुटंकर चांत त्वंग। लीपनंग रक्त चरण चरण में चरण में चर चरमण अनवंत द्वारंग। पीत तिहंग बाई रूपंग स्तंभ ने, गोविंद नाम गन स्मरांत। ज्ञानी अजनांत आसरंग, दुर्लभ दे उदरंत सा सर नानक। हर हर हर हर हर हरे जपंता। स्वंत द्वंग चौत गुणंग पूर्णंग, बहलो कृपाला गवीरंग उच्चे सर्वंग पारा। प्रीत्या प्रियंग विश्राम चरणंग, ना अनाथ नाथे नानक सरनंग। मिर्गे पैकांत बदक परणे, लखे आवदे अहो जस। खेण गोपाले नानक रोम ना छेदते। बहु जतन करता बलवंत कारी, से बंत सूरा चतर दिसे। बिकम थान बसंत उचे, न स्मरंत मरनंग कदांचे। हवंत आग्या भगवान पुरखे, नानक कीती सास खरखते। सबदंग रितिंग हितंग, मया कीर्तंग कली कर्म करुतवा। मिटांत तदरागत परम भंग, भगवान रमंग सर्वत्र तहनंग। दृष्ट तुहंग मोग दर्शनंग, संत साध रसना। हर हर हर हरे नानक प्रियंग, जाप जपना।

मित्र जन्म परमत नरक अनक पावग ना सिद्ध तै निर्मल साध संगे जपंत नानक पाल नामंग हरमंत गुण गोविंद नित प्रत है तारण सारण स्वामी रमन शील परमेश्वर कारण कारण समर्थ है दान दे प्रभ पूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले गुण निदान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक दुर्गम स्थान सुख मंग महा दुख सर्व सुख ने दुर्वचन भेद परमंग साक्त पिसनंग सृजन अस्तंग सोग हरकंग पैकिंग तह निरपव पैट बियंग महानगर वासंग धर्म लखने प्रभया साध संग राम राम रमणंग सरन नानक हर हर दयाल चरणंग हे जित सूर सग्रामंग अत बलना भा मर्दन गर गण गंधर्व देव मनुखंग पशु पंखी बैमोण हर कारण हारंग नमस्कारंग सरन नानक जगदीश्वर हे कामंग नरक विश्रामंग बहु जोनी परमावण चेतरण चेतरंग त्रैलोक गमंग जप तप सील विदारण अल्प सुख वेत चंचल ऊच नीच समावण पाव पै विमुचत तब पै मुचत सात संगम ओट नानक नारायण हे कल मूल क्रोधंक दांच करना मैं उपर जते विखयंत जीवंग विषयं क्रोत नितंग क्रोत जथा मरकट अनक शासन ताड़ांत जमदूते तब संगे धर्मंग नर दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया क्रोत हे लोभा लंपट संग सिमर सिर मोहर अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बा प्रकारंग अनक पांत बा डोलते नच मित्रंग नच इष्टंग नच बादब नच मात पिता तब लज्जया करनंग क्रोत ख्यादे खादंग साजंग साज समझया त्रै त्रै सरन स्वामी बिख्यापत नानक हार नर रे हे जन मरन मूलंग कारंग पापात्मा मित्रंग तजंत सतरंग दड़ंत नानक अनकम।

करियो संसार सतगुरु तराया मिटिया आवा गौण जा पूरा पाया हर अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरे हाथ पद्म आगम सुख बासना सखी मोरे कंठ रताना पेक दुख नासना बासो संग गपाल सगर सुख रास हर हर रिद्ध सिद्ध नव निद बसे जिस सदा कारा पर त्रै रावण जाहे सही ता लाजी है नित प्रतेहरे पर धर्व शिदर कत ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारे हर हं सुनते पहे पनीत पार ब्रह्म विचारे ऊपर बने आकाश तले तार सोते दै दिस चमके भिजल मुख को जोते खोजत फिरो उपदेश पियो कत पाइये हर हं जे मस्तक होवे भाग तां दस समाइये डिठे सवे थाव नहीं तुद जेया बद्धो पुरख विधाते तां तू सोहया बसते सगन पार नूप रामदास पर हर हं नानक कसमल जाहे नाइये रामदास सारा चातरक चेत सुचेत सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसे को आइए बन बन फिर तो दास बूंद जल कारने हर हं त्यों हर जन मांगे नाम क नानक बलियार ने मित का चेत अनूप अमरा मना जानिए गाहक गुणे अपार सोता तपशानिए चित है चित समाए ता हो वे रंग कणा हर हं चंचल चोरे मार ता पावे सच तना सुपने उबी पई गेहो की ना चला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बन चला खोजो ताके चरण कहो के तपाइये हर हं सोई जतन बताए सखी प्रह पाइये नैन न देखे दा साध से नैन बेहद्या कर न सुने नाद करन मुंद कर दया रसना जपे न नाम तिल तिल का

दा मोहि मिलियो पर व्यापना संगी तजे संगी भजे गोविंदा कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए जिन ऐसा कर बुझिया मीता मारा सोए कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पीस हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश कबीर सोई मारिए जे मुए सुख होए भलो।

0: ध्यान मारे भगवंता। कबीर चंदन का बिरवा पला, बेड़ियों टाक पलास, ओए पी चंदन हुए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बात बढ़ाई बुढ़िया, यूं मत डूबे कोए, चंदन के निकटे बसे बास सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गापले अपने हाथ। कबीर जय जय हूँ फिरियो, कौतक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही वारा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया, पली पाठक सती गाओ, आग लगो ते तौलहर जय नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोइये, जो अपने ग्रह जाए रो सकत बपुरे।
1: जो हट हट बकाए, कबीर साकत ऐसा है जैसी लसन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए नदान। कबीर माया डोलनी पवन चकोलन हार, संतो माखन खाया छाछ पिया संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह अवतार, जन बलोया तिन खाया अवर बलोबन हार। कबीर माया चोटी मुस मुस लावे हाट, एक कबीरा नाम सह जिन कीनी बार है बाट। कबीर सूख न ये जोग करे जो बहते मीत, जो चत राखे एक स्योते सुख पावे नीत। कबीर जिस मरनी ती जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। राम पदार्थ पाई के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटर नहीं पार को नहीं गाग नहीं मोल। वीरता से प्रीत कर जा कूठा गुरु राम, पंडित राजे भुगती आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक से अंत बदा जाए, भावे लांबे केस कर भावे कर मडाए।

काजल की कोठरी अंध परे तिस माहि मो बलिहारी तिन को पैसे जुनीक जाहि वीर तन जाएगा सको दल हो बहोर नागे पापो ते गए जल के लाख करोड़ कबीर तन जाएगा कबने मार्ग लाए कह संगत कर साध की कह हर कोई गुन गाए वीर मरता मरता जग मुआ मर बिन जाने कोई ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए वीर मानस जन्म दिलांबे होए न बार है बार जो बन फल पाके पोए गरे बहरन लागे डार वीरा तू ही कबीर तू तेरू ना कबीर राम रतन तब पाई है जा पहले तज है शरीर वीर चंक न चंकिए तुमरू कहन होए कर्म क्रीम जो कर रहे मिट न सके कोई वीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोई राम कसौटी सो सह जो मर्जी वा होए वीर उजल पहरी का परिपाल सुपारी खाए एक शहर के नाम बिन बाधे जम पुर जाहि कबीर बेड़ा जर जरा फूटे शेख हजार हर हर तर गए डूबे जर सिर पार वीर हाट जरे जो नाकी किस जर जो कास रोह जग जरता देख कै पयो कबीर उदास वीर गर्भ न कीजिए चामल पेटे हाड ऐबर ऊपर शतर तरते पर उतरनी गाड़ वीर गर्भ न कीजिए ऊंचा देख आवास आज काल पुर डेट न ऊपर जामे कास वीर गर्भ न कीजिए न कने सिय कोय अज सो नाम समुद्र में क्या जाना जानो क्या होए वीर गर्भ न कीजिए देही देख सुरंग आज काल कर जाओगे जो काचरी को अंग मेरे लूटना है ता लूट ले राम नाम है लूट हर पाछे पछता होंगे प्राण जाएंगे छूट वीर ऐसा कोई न जन्मे अपने कर लावे आग पंचो लड़का जार के रहे राम ले लाग को है लड़का बेची लड़की बेचे कोय साझा करे कबीर से हर संग बंज करे वीरे चेतावनी मत्स्य सर जाए पाछे भोज भोग तिन को गुड़ लैकाए वीर मैं जानियो पढ़ भू पलो पढ़ वे सो पर जोग भगत न छाडो राम की भावे निंदो लोग वीर लोग निंदे पपड़ा जे मन नाहे ज्ञान राम कबीरा रफरे अवस्थ जी सब का कबीर पर देसी कह का करे चौधरी चौदस लागी आखेता जल कोयला पैता गे पाँच न लाग वीर कहता जल कोयला पै खा पुर फूट भूख जोगी बपड़ा खेलो आसन रही बपूत वीर थोरे जल माछली चीवर मेलियो जाल ये टोक सैंक जुट से कर फिर कर समुद्र संभाल कबीर समुद्र न छोड़िए जात खारू हुए ओकर बोकर ढूंढते भलू न कह कोई कबीर न्यूग साहिब बह गए थागी ना ही कोई दीन गरीबी अपनी करते कोई सोए वीर बैसरो की कोकर बही साखत की बुरी माए नैत सुने हर नाम जसो पाप बसान जाए वीर हर ना दुबला हरियारा ताल लाक हेरी एक जुकेता बंचो काल कबीर गंगा तीर जो कर करी पीवे निर्मल नीर बिन हर भगत न मुक्त होए यो कहे रमे कबीर वीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछे लागू हर कहत कबीर कबीर वीर हर दी पीरी चूना उजल पाए राम स्नेही तमले दोनों वन गुआए वीर हर दी प्रीत न हरै चूनो चह न रहाए बलिहारी प्रीत गोज जात वरन कुल जाए वीर मुख द्वारा संकरा सा राय दस पाए मर तो मैगल हुई रहो निकसो कर जाए वीर ऐसा सतगुर जी मिले तुठा करि फसाओ मुख द्वारा मुखला सहज आव जाओ वीर नाम ओहि शान नशा परी नाम ओहि करनी गाओ मत हर पूछे कौन है मेरे जात न नाम
वीर मोहे मरने का चाव है मरो तहार कह द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बाल वीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके वीर क्या जानो किसार के भयो कबीर वीर वीर सपने ही बढ़ रहा है जय मुख निक से राम ताके पगी पाली मेरे तन को चाव वीर माटी के हम पूतरे मार्स राख में नाव चार दिवस के पहले बड़ बड़ बिंदे ठाव वीर वैद्य कर काल आप पिसाई पिसाई तह तह बादल पूछिए कबू न लाई पाई वीर जह दरा बचाती हो हटके ना ही कोई सोदर कैसा सूढ़िए सोदर कैसे छोड़िए जोदर ऐसा हो वीर डूबा था पैबरियो गुण की लहर चाबक जब देखो बेड़ा जर जर तब उतर पड़े हो फर्क वीर पापी पतल पावीर पूजा न सहाय माखी चंद्र पर है जेहे बगंध तह जाए वीर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार एक वीरा नाम हुआ जेर नाही रूह बनहार वीर राम न त्यायो मुट्टी लागी खोर काया हड्डी कार की ना ओचारे बहोर वीर ऐसे ही हुए पर ही मन को पावत कीन मरने से क्या डर पुना जब हाथ सुधौरा लीन वीर राज को गंड चूसी है गंड को मरिए रोय अंगन आरे मार से पल हुन कह कोय वीर गागर जल भरी आज काल जय फूट गर्जन चेते अपन वध माज ली जागे लूट वीर कुकर राम को मुतिया मेरू ना हो गले हमारी जीवरी जह खिंचे तह जाओ वीर जपनी काट की क्या दिखला बेलो ये हृदय राम ने चेती ये जपनी क्या होए वीर फिर हो प्यंग गम मन बसे मतन माने कोय राम प्योगी ना जिये जे तबारा हो कबीर पार चंद ने तन है एक सगान दो तह मृत्यु तुम लू काट मृगंध ये जम का ठेंडा बुरा ओ नहीं सहया जाए एक जो साधु मोह मिली हो तन लिया चलाए कबीर बैद कहे हो ही भला दारू मेरे वस ये तो वस्त गोपाल की जब पावे लेखस वीर नौबत है अपनी दैन दास लिहु बजाए नदी नाम संजोग जो बहोर रमिल है आए कबीर सास मुद्दे मस करो कलम करो बन राय बस का कागज जा करो हर जस लेखन न जाए वीर जात जुला क्या करे हृदय बसे गोपाल वीर मैया कांट मेल चूक है सरबन जाल वीर ऐसा को निबंध दे जराए पंच लड़के मार कह रहे राम ने लाए वीर ऐसा को नहीं तन दे वह फूक अंधा लोग न जानी रे हुकबीरा को वीर सती पुकारे चह चढ़ी सनो वीर मसान लोग सवाया चल गयो हम तुम काम निदान वीर मन पंखी वह्यो उड उड दहस जाए जो जैसी संगत मिले सो सह सो फलकाए वीर जाको खोजते पायो सोई ठौर सोई पर वह तू पया ता को कहता और वीर मारी मरो कसंगी केले नगर जो बेर ओ चूले उचीरिय साफ संगन है वीर भार पड़ाई सैर चरे चल चलो चाहे बाट अपने पारे नाल आगे औ कटकाट

मेरे सिख साखा बहुते किए किसो की रवी तो चाले से हर मिलन को बीच अटके चीत वीर कारण बपड़ा क्या करे जो राम न करे सहाय जह जह डाली पग तरो सोई मुरमुर जाए कबीर अपने खोप देश के मुख वह पर है रेत रास बरानी खाया रास बरानी रखते खाया कर करके वीर साधु की संगत रहो योगी तुलसी का भूल हार सो हो साकत संग में जाओ कबीर संगत साध की दिन दिन दूना है सागत कारी का मेरी तोय हुए रसे कबीर मन मुड़िया नहीं केस मुड़ाए कहा जो कुछ किया सो मन किया मुंडा मुड़ा जाए कबीर राम लक्ष्मण जी छोड़िए तन तन जाए तन जा चल कम चित भेजे रामे नाम सिवा कबीर जो हम जंत बजाव ते टूट गई सब तार जंत बेचारा क्या करे कले बजावन हार कबीर माया मुंडे तंगूक जाति परम न जाए आप डुबे चौबेद में चाले चेले दिए बहाय कबीर जेते पाप किए रखे तले दुराए परगट भय निदान सब जग पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमन छाड़ कै पाल नु बहुत कुटम तंदा करता रह गया पाई रहन बंद कबीर हर का सिमरन छाट के रात जगा भी जाए सरपन हुए कह उतर जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाट के हो ही राख नार गद ही हुए कह उतर पार सहे मन चाट कबीर चतुराई अत कनी हर जस हृदय हर जप हृदय माहे सूरी ऊपर के नगरे ठहर नाहे वीर सोई मुख तन है जा मुख कही राम देही किसकी बपरी पवित्र हुराम वीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास जय कुल दास रूप जय सो कुल का खुलास वीर गए ब्याहन सगन कहनु लाख तजा कह आस पति पिखिया पली जौहर से मृत दिन जाहि कबीर सब जग हो फिर मादल कंद चढ़ाए काहू को सब देखी ठोक बजाए मार्ग मोती भी तेरे अंधा निकसे आए जोत बिना जगदीश की जगत अलंगी जाए मोडा बस कबीर का उपजो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ के कर ली आया माल वीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई पाछे पाव न दीजिए आगे होए सो होए वीर जग बाध्यो जे है जीवरी तह मत बंद हो कबीर जय है आटा लून सोन समान शरीर कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैनहा अजू जियो न छोड़ी रंकाई नैना कबीर नैन निहारो तुझको सरबन सुनो तो नाम बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल उठाओ कबीर स्वर्ग नरकती मैं रहे सतगुर की प्रसाद चरण कमल की मौज में रहो अंत अराध कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान कह बेको शोभा नहीं देखा ही परवार कबीर देख के कह कहो कहे ना को पतियाए हर जैसा तैसा हुई हार रहो हरक गुन गाए कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे जैसे बचरे कूज मन माया मतारे वीर अंबर का नहर्ष आया वर्ख परे सरताल चात्र बजोर तरस रहे तेरे को कौन हवाल वीर चकी जो नस बिछरे आय मिले प्रपात जो नर बिछरे राम से नादन मिले नरात कबीर नारायण नारायण बिछोरया रहो सांख मजूर देवल देव ताहड़ी देस उगवत सूर कबीर सोता क्या करे जाग रोई पै दुख जाका बासा गोर में ओ क्यों सो वै सुख

कर देख परिदा जो तै मारन मुकियां तिना न मारी कम आपने कर जाइए पैर तिना दे चम परिदा जा तो खटन विल ता तू रता दिस्यो वर्ग सवाही नहीं जा परिया ता लद्या देख फरीदा जो थिया दाड़ी होई पूर अगों नेड़ा आया पिछा रहया दूर देख फरीदा जे थिया सकर होई वैस साई वाजो अपने वेदन कहिया किस फरीदा अखी देख पतीणिया

लगे दुख, रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पियो, रिदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाई जियो। आज न सुती कांत से अंग मुड़ी मुड़ जाई, रिदा

सतगुरु जी ऐसी कृपा कर देन, ऐसी मरामत कर देन, आप जी सब संगत दे हिरदे दे विच सतगुरु जी का पावन नाम वस जावे, हर समय उस नाम की तलाश रवे, हर समय उस मालक नूं चेता करदे रहिए। साडा जीवन सतगुरु जीवन साडा जीना इस संसार दे विच आया होया सफल हो जावे। सो आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल इसे तरह